0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाल मीट, चिकन, आटा दाल चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फाउंड ब्रेडफोर्ड।

0: 4955555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश मैनिंगम सुपर स्टोर।
1: मैनिंगम सुपर स्टोर
2: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
0: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
2: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
0: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
6: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा असर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड 3

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: वाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, वाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
10: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
11: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
10: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
11: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने एशियन वेडिंग्स UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children, to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services, with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

की चटक, कलियों की चटक, बुलबुल की चहक, फूलों की महक, सब्जों की लहक, खारों की खटक, पत्तों की खड़क। कलियों की चटक, बुलबुल की चहक, फूलों की महक, सब्जों की लहक, खारों की खटक, पत्तों की खड़क, तारों की चमक, जरलों की दमक।

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: जाहिर की आंख से न तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदाए दिल वाह करे कोई। अड़ बैठे क्या समझ के भला तूर पर कलीम, ताकत हो दीद की तो तकाजा करे कोई।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
11: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। महमूद रिज़वी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिज़वी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: بن إرقوة بن عيضي بن زيشان.
1: You're listening to Bradford Asian Radio
2: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट्स, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
12: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
11: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
12: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: You're listening to
14: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
11: दुबई ज्वेलर्स,
13: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
14: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا

لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول.

0: Here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
2: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
1: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
2: बालियां अंगूठियां और हार,
1: जो दुल्हन करे सिंगार,
2: आज ही मामू काकी की दुकान,
1: खालिस सोने की पहचान,
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
2: आपकी शान
1: हमारी आन,
2: क्वालिटी की पहचान।
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
3: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
2: सोफी ज्वेलर्स?
3: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
2: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
1: अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
5: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश मैनिंगम सुपर स्टोर।
5: मैनिंगम सुपर स्टोर,
6: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
6: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
9: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.
10: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
8: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
7: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
8: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
9: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
10: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
11: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
10: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
11: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
10: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
11: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
12: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
11: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
10: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: यू आर लिस्निंग टू ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
8: 1413 AM एंड ऑनलाइन।
9: यू आर लिस्निंग टू
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी। बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
1: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए।
0: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
1: बालियां अंगूठियां और हार,
0: जो दुल्हन करे सिंगार।
1: आज ही मामू काके की दुकान,
0: खालिस सोने की पहचान।
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
0: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
1: आपकी शान
0: हमारी आन,
1: क्वालिटी की पहचान।
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
2: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
1: सोफी ज्वेलर्स?
2: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम। लेडी स्टाफ
1: सोफी ज्वेलर्स 1-1 Oak Lane BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स।
0: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
3: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
4: ओपन 7 days 10-6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
3: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
9: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.
10: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: देख आकर कूचाए चाके गिरेबां में कभी कैस तू लैला भी तू सहरा भी तू महमिल भी तू।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
11: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grant Road, Bradford 7, 414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने एशियन वेडिंग्स UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा।

0: Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: वाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, वाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी। बुखारी फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल एक ही तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की से, शॉपिंग की सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट दुल्हन बुटीक, वाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। पसंद आपकी।

0: आपकी शान
1: हमारी आन
0: क्वालिटी की पहचान
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duffert Lane Bradford PD95ER01274491442
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
2: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
0: सोफी ज्वेलर्स?
2: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
0: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स।
3: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
4: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
9: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर
4: बड़े से बड़े।
5: 1413 AM and online।

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं
7: पहुँचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स।

0: सोफी ज्वेलर्स 121 ओक लेन BD9 4QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trust.
8: Sophie Jewelers, 21 Oakland, BD94Q 0270056 04. Sophie Jewelers.
10: Looking to start driving or building a strong career? Safeway Rider, you can learn automatic.

0: 1679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
1: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता? ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
2: मैनिंगम सुपर स्टोर,
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड 3

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1430।

0: www.radiofreeeurope.org.uk।
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1430।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
14: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online.

पीले पत्तों का मौसम जा चुका है, जमीन पे हर तरफ रंग ही रंग है, शोख और दिलकश। उजले आसमान में सफेद बादलों की टुकड़ियां तैर रही हैं, वादियों में हरी घास के कालीन बिछ गए हैं। यही सब कुछ था जब हम तुम मिले थे, वही सब कुछ है, लेकिन तुम नहीं हो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274-306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio,
7: 1413 AM and online.

ये बेडफोर्ड एशियन रेडियो की आवाज़ है 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bedfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वह अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं, हम उन्हें भी दिल की गहराइयों से आज की इस खूबसूरत महफिल गज़ल उसने छेड़ी में खुश आमदीद कहेंगे। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677। हमारे वो अहबाब जिनका फेसबुक अकाउंट है, मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पे तशरीफ लाइए, एक मरतबा लाइक कर लें और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे।

दोस्तों हमारे अहवाल कुछ यूँ हैं कि सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है और कहा यह जा रहा है कि इसमें शिद्दत आ सकती है और शदीद गरज चमक और ओले पड़ने का इम्कान भी है, यानी हेल एंड थंडर। और आपको पता है कि ये मौसम यहाँ इंग्लैंड में तो कोई नई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है। आज भी लगता है वही सिलसिला है। अभी जब मैं प्रोग्राम करने आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा था तो टेम्परेचर 13 सेंटीग्रेड था। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक ये बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है और टेम्परेचर 16 सेंटीग्रेड तक जाएगा। आपके यहाँ मौसम कैसा है, आपके दिलों का मौसम कैसा है, आपके शहर का मौसम कैसा है, मुझे ज़रूर बताइएगा। गज़ल उसने छेड़ी का आगाज़ उसके नाम नामी से हो चुका है जिसे लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। कोई खुदावंद करीम कहकर इल्तिजा करता है, कोई भगवान कहकर प्रार्थना करता है, कोई वाहे गुरु कहकर अरदास करता है और कोई गॉड या लॉर्ड कहकर घुटने टेकता है। उसे किसी भी नाम से, किसी भी वक्त, किसी भी लहजा, किसी भी आन, किसी भी दुख, किसी भी तकलीफ, किसी भी परेशानी, किसी भी मुसीबत, किसी भी बीमारी में एक बार दिल की गहराइयों से पुकार कर देखिए, वो हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहता है। और दोस्तों सच्चाई ये है, हकीकत यह है कि हम सब झुकते एक ही के सामने हैं, मांगते एक ही से हैं और बेशक वो हम सब का रब है, वो हम सब का रब्बुल आलमी है।

दोस्तों अब तारुफ हो जाए हमारे उन मेहमानों से जो तशरीफ ला चुके हैं, रियासत साहब हडर्सफील्ड की हसीन फ़ज़ाओं से, वक़ार साहब तशरीफ लाए हैं वेकफील्ड से, रियाज साहब हडर्सफील्ड के बजाय हमेशा की तरह आज भी यॉर्कशायर की हसीन वादी ब्रैडफोर्ड से, रियाज साहब ब्रैडफोर्ड से, सुमेरा बिटिया ब्रैडफोर्ड 3 से, भगत सिंह साहब हमारी बज़ में मौजूद हैं और आप तशरीफ लाए हैं लीड से, शहनाज बिटिया तशरीफ लाई हैं ब्रैडफोर्ड 18 से, और डॉक्टर माहरुख साहबा ब्रैडफोर्ड की हसीन वादी से। अब हम खुश आमदीद कहते हैं रियासत साहब और उनके अहले खाना को, कहते हैं हमने ढूंढ के एक बहुत खूबसूरत गीत निकाला है, यहाँ पर भी बारिश का सिलसिला सुबह से जारी है और हम इस वक्त घर में बैठे हैं और आपके प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। रियासत साहब आपका, आपके अहल खाना का बहुत शुक्रिया कि इस कदर बाकायदगी के साथ तशरीफ़ लाकर आप हमारे प्रोग्राम की रौनक बढ़ाते हैं और इसे इज्जत बख्शते हैं। तो हम बिला किसी ताखीर के इस दुआ के साथ कि अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे आपका तोहफ़ा लेकर हाजिर हैं। वाकई बहुत ढूंढ के गीत निकाला है, इसमें तो कोई शक ही नहीं।

दोस्तों, हम इंतज़ार कर रहे थे अपने दोस्तों का और वो अभी तक आए नहीं हैं। बड़ी अजीब बात है, यानी कमर्शल्स का। बहरहाल मैं अभी शाह साहब से इसकी शिकायत करूंगा। हमें इंतज़ार करवा के कहाँ गायब हो गए हैं वो।

ऐसा करते हैं कि हम आपको लिए चलते हैं वेकफील्ड, जहां मौजूद हैं हमारे, मेरा ख्याल आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, लग रहा है मुझे कि वो आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं आए, कोई बात नहीं, अब हम वेकफील्ड लिए चलते हैं जहां विकार मियां मौजूद हैं और आज ये लंदन जा रहे हैं डे ट्रिप पर। कहते हैं अभी मैं अपने अहले खाना के साथ बैठा हूं और गीत सुनते ही इंशाल्लाह रवानगी होगी। हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है और हल्की हल्की सर्दी का एहसास हो रहा है भाई, कुछ अहवाल यहाँ भी ऐसा ही है। वक़ार मियाँ जीते रहो, अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे अहले खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। अपने उन तमाम सुनने वालों को, और वो हमारे मेहमान नहीं आए, पता नहीं क्या बात हो गई। खैर अभी हम देखते हैं, हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ।

भगत सिंह साहब, और भगत सिंह साहब की फरमाइश हमेशा बहुत खूबसूरत और यकता होती है। सबसे पहले तो हम आपका मोहब्बत भरा सलाम तमाम ही सामईन और नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहे हैं, और फिर हम आपका तोहफा आपकी नज़र कर रहे हैं, कबूल फरमाइए। भगत सिंह साहब, आमद का बहुत शुक्रिया।

पलट न सकूं, तू सदा दे तो मैं पलट

कहीं एक और अताप की नजर शाम। घर की दीवार उधर में रहती हैं साथ मेरे सफर में रहती है।

हैं, मैंने आपसे तीन कतात का अपने वादा किया था, तो तीसरा और आखिरी कता आपकी नजर कर रहा हूं कि इश्क भी क्या जब शय है रिफत,

इश्क भी क्या जब शहर सिर्फ उसका।

सिर्फ उसका ख्याल रहता है। ये कथा मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर गया कि वो ये है कि जहन से निकल गया, कुछ अजब दिल का हाल रहता है, भूल जाता है आदमी। हाँ, इश्क भी क्या अजब शह है रिफत, कुछ अजब दिल का हाल रहता है, भूल जाता है आदमी सब कुछ, सिर्फ उसका ख्याल रहता है। सो हमने अपना वादा पूरा कर दिया है शाम, जिस मोहब्बत चाहत और प्यार से आप तशरीफ लाए थे। गो मैंने बरसों से मुशायरे पढ़ना छोड़ दिए हैं, निज़ामत भी ख़त्म कर दी है कुछ नागुरी वजूहात की बिना पर, लेकिन क्योंकि आपकी ख्वाहिश थी तो मैंने आपकी ख्वाहिश का एहतराम किया है। उम्मीद है कि क़तात आपको पसंद आए होंगे। और परदेसी मजीद साहब, आपका पैगाम पहुंच रहा है, जब ही हमने आपका नाम अपनी महफिल में शामिल किया है। आप सुन रहे हैं गज़ल उसने छेड़ी, जिसे आपकी खिदमत में 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में ऑनलाइन से www.bradfordasianradio.co.uk पर भी सुना जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि हमारे नादीदा लिसनर सोते मुजाहिद हमारे हमराह मौजूद हैं, जो हमारे लिए बड़ी हिम्मत अफजाई का बायस होता है। और अब हम एक खूबसूरत गज़ल पेश करेंगे, लेकिन कमर्शियल के वक्फे के बाद, जो श्याम साहब हमने आपके लिए मुंतखब की है, और ये गज़ल मेरे दिल के बहुत करीब है। सो मैंने सोचा कि जिस मोहब्बत और चाहत और प्यार से आप तशरीफ लाए हैं, उसी मोहब्बत चाहत और प्यार के साथ मैं ये गज़ल आपकी नज़र करूँगा। तो कमर्शियल के वक्फे के फौरन बाद हम श्याम साहब आपका तोहफा पेश करेंगे, और उसके बाद दोस्तों आपका पसंदीदा सेगमेंट वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग लेकर हाजिर रहेंगे। मेहमान कौन है इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बस आप सब ये जानते हैं कि इस सेगमेंट का मकसद है अपनी उन ख्वातीन शुअरा की हिम्मत अफजाई करना जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, उन्हें हम बुलाकर आप तक पहुंचाते हैं उनकी खूबसूरत आवाज़ में उनका कलाम, और उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। और जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, हम उन्हें प्रोग्राम में शामिल करके खराज अकीदत पेश करते हैं। सो आज भी हमने एक बहुत खूबसूरत शायरा को मुंतखब किया है आपके लिए, और वो कौन है उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हम अपने तमाम उन सुनने वालों को बता दें जो हमें इस वक्त आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं, और हमारी आज की इस महफिल गज़ल उसने छेड़ी की इज्जत व तौक़ीर बढ़ाना चाहें, हम उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306611। जी हाँ, मैंने आपको बताया है नंबर 01274306677, ये नंबर है। हम आपको दिल की तमाम तर गहराइयों से खुश आमदीद कहेंगे। परदेसी मजीद साहब, खानिया गुजरात पाकिस्तान में आपका पैगाम मुझ तक पहुंच गया है, और हम उसे ज़रूर शामिल प्रोग्राम करेंगे अपने उस सेगमेंट के बाद जिसे हम कहते हैं वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। मुलाकात होती है, उम्मीद करता हूँ कि हमारे मेहमान प्यारे कमर्शल्स आज ज़रूर आएंगे, और पहले तो हमें बड़ा इंतज़ार करवा चुके हैं, देखते हैं आगे आगे क्या होता है।

दोस्तों, चंद लम्हे की देर है। मेहमानों ने मुझे हाथ से इशारा किया है कि वो तशरीफ़ लाना चाहते हैं और इंशाल्लाह उनसे मुलाकात होगी। देखिए, ये कमर्शियल रेडियो है और इसमें कमर्शियल्स का पहुंचना आप तक बेइंतहा ज़रूरी है। हमारी भी उनसे बड़ी गहरी दोस्ती है, हमारी बात को कभी रद्द नहीं करते और ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं। चंद ही लम्हों के बाद हम कमर्शियल की जानब बढ़ पाएंगे।

दोस्तों मुझे लगता है कि हम आपकी उनसे मुलाकात 3:25 पर मुलाकात करवा पाएंगे। हमारी तो कोशिश यह है कि उनसे मुलाकात हो जाए आपकी, इसलिए कि बेइंतहा ज़रूरी है। देखते हैं, एक 30 सेकंड मुझे और दीजिए।

0: तरहा मुझे आंख दिखाता है तो दुख होता है, अब मुझे आंख दिखाता है तो दुख होता है, कल जिसे प्यार किया था सगे भाई की तरह।
1: वाह वाह,
0: अब मुझे आंख दिखाता
1: क्या कहने हैं मानसी, वाह वाह वाह वाह,
0: अब मुझे आंख दिखाता है।
1: मुशायरे के सरपरस्त जनाब जिन्नुरैन साहब और
2: हमारे हमारे मुशायरे के सरपरस्त
1: जनाब चुन्ना दरोगा साहब आपको गुल पेश कर रहे हैं। ये दो दो मोहतरम मौदहा के आपके और साथ में कमरुद्दीन जुगनू साहब, तीन मोहतरम शख्सियात की दुआएं हिमांशी आपके हिस्से में आई, बहुत मुबारकबाद, क्या कहने। वाह वाह,
0: जी शुक्रिया। सुने भाई, ये अच्छी बात है कि आप मुझे मुहासिबाजी कर रहे हैं, और ये बात साबित भी करती है, मैं साबित करती हूँ कि उर्दू से नफरत करने वाले लोग कामयाब नहीं हो सकते।
1: क्या कहने भाई, जिंदाबाद हिमांशी, वाह वाह वाह वाह।
0: जी शुक्रिया। गजल सुने
1: जी।
0: दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फें सफेद हो गई 19 साल में।
1: क्या कहने क्या कहने,
0: बहुत शुक्रिया। दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फें सफेद हो गई 19 साल में, ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर,
1: ऐसे वो रो रहा था,
0: ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर, आया हुआ हो जैसे किसी इंतकाल में, ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर, आया हुआ हो जैसे किसी इंतकाल में। ये बात जानती हूँ मगर मानती नहीं,
1: ये बात जानती हूँ
0: मगर मानती नहीं, दिन कट रहे हैं आज भी तेरे ख्याल में। ये बात जानती हूँ मगर मानती नहीं, दिन कट रहे हैं आज भी तेरे ख्याल में, एक बार मुझको अपनी निगहबानी सौंप दे, एक बार मुझको अपनी निगहबानी सौंप दे, उम्रें गुजार दूंगी तेरी देखभाल में। एक बार मुझको अपनी निगहबानी सौंप दे, उम्रें गुजार दूंगी तेरी देखभाल में। वो तो सवाल पूछ के आगे निकल गया, वो तो सवाल पूछ के आगे निकल गया, अटकी हुई हूँ मैं मगर उसके सवाल में। बहुत शुक्रिया। एक गजल और। तुम आओगे नुमाइशे सामान देखकर, क्यों कारोबार छोड़ दूं नुकसान देखकर।
1: क्या कहना।
0: तुम आओगे नुमाइशे सामान देखकर, क्यों कारोबार छोड़ दूं नुकसान देखकर, नखरे उठा रही हूँ तुम्हारी तलाश के, नखरे उठा रही हूँ तुम्हारी तलाश के, रुकती नहीं हूँ रास्ता वीरान देखकर। सोचा नहीं था मैंने कभी तेरे जैसा शख्स, सोचा नहीं था मैंने कभी तेरे जैसा शख्स, मुंह फेर लेगा मुझको परेशान देखकर।
1: क्या कहने क्या कहने।
0: सोचा नहीं था मैंने कभी तेरे जैसा शख्स, मुंह फेर लेगा मुझको परेशान देखकर, तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझको पशेमान देखकर।
1: सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं मानसी, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। देखिए एक एक बार मैं फिर गुजारिश कर दूंगा पढ़ने के लिए। देखिए ये आपने बहुत सारे वीडियोस हिमांशी के सुने हैं, ये शेर बहुत वायरल है, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ हमारे मीडिया से लोग मौजूद हैं, मौदहा इस शेर को इस तरह सुन के बताए, और कैमरामैन साहब जब ये शेर ख़त्म हो तो आप कैमरा घुमाइएगा लोगों की तरफ कि वो दाद रिकॉर्ड हो, ये पता चले कि मौदहा से ज़्यादा इस शेर पर कभी हिमांशी को दाद नहीं मिली। हिमांशी एक बार फिर ये शेर, और आप सब तैयार रहें। तो ये बताइए कि रूबरू सुन के ज्यादा मजा आया, सब तैयार रहिए पीछे तक, इधर भी मोहल्ला तैयार रहे, और माइक कैमरा वाले भाई जी हिमांशी,
0: तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल,
1: तू लाख बेवफा है,
0: तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझको पशेमान देख कर।
1: क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: सुभानअल्लाह
1: सुभानअल्लाह।
0: जाहिर न हो कि मुझसे तेरा वास्ता भी है, जाहिर न हो कि मुझसे तेरा वास्ता भी है, सबकी नजर है तुझ पे मेरी जान देख कर। जाहिर न हो कि मुझसे तेरा वास्ता भी है, सबकी नजर है तुझ पे मेरी जान देख कर। लोग तो लोग हैं, लोगों सुने, की तरह देखते हैं,
1: लोग तो लोग हैं, लोगों की तरह देखते हैं,
0: लोग तो लोग हैं, लोगों की तरह देखते हैं, एक हम हैं उसे बच्चों की तरह देखते
1: क्या
0: हैं।
1: कहने, क्या कहने,
0: लोग तो लोग हैं, लोगों की तरह देखते हैं, एक हम हैं उसे बच्चों की तरह देखते हैं, हमको दुनिया ने लकड़हारा समझ रखा है।
1: हमको दुनिया ने लकड़हारा समझ रखा है।
0: हम तो पेड़ों को परिंदों की तरह देखते हैं। हमको
1: हिमांशी आपके लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है, मोहतरमा अंजुम रहबर साहब आपको दाद से नवाज रही हैं, दुआओं से नवाज रही हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। क्या कहने,
0: हमको दुनिया ने लकड़हारा समझ रखा है।
1: वाह,
0: हम तो पेड़ों को परिंदों की तरह देखते हैं, मैं जो देखूं तो झपकती नहीं पलकें मेरी,
1: जो देखूं
0: मैं जो देखूं तो झपकती नहीं पलकें मेरी, और हजरत मुझे अंधों की तरह देखते हैं।
1: आहा आहा,
0: मैं जो देखूं तो झपकती नहीं पलकें मेरी, और हजरत मुझे अंधों की तरह देखते हैं। तुम तो फिर गैर हो, तुम तो फिर गैर हो, तुमसे तो शिकायत कैसी।
1: आहा, तुम तो फिर गैर हो,
0: तुम तो फिर गैर हो, तुमसे तो शिकायत कैसी, मेरे अपने मुझे गैरों की तरह देखते हैं।
1: आहा,
0: तुम तो फिर गैर हो।
1: भाई हिमांशी क्या क्या शेर सुना रही हैं, वाह वाह वाह वाह।
0: मेरे अपने मुझे गैरों की तरह देखते हैं, तेरा दीदार कजा होता नहीं है हमसे।
1: क्या अच्छा मिसरा है,
0: तेरा दीदार कजा होता नहीं है हमसे, हम तुझे देखने वालों की तरह देखते हैं।
1: तेरा दीदार कजा होता नहीं है हमसे,
0: तेरा दीदार कजा होता नहीं है हमसे,
1: हम तुझे देखने वालों की तरह देखते हैं। क्या अच्छा शेर है, वाह वाह
0: बहुत शुक्रिया। आखिरी गजल फिर मैं अपनी जगह लेती हूँ, वक्त जरा कम है। गजल सुना। दिल की बस्ती में उजाला नहीं होने वाला,
1: वाह,
0: दिल की बस्ती में उजाला नहीं होने वाला, मेरी रातों का खसारा नहीं होने वाला।
1: आहा,
0: दिल की बस्ती में उजाला नहीं होने वाला, मेरी रातों का खसारा नहीं होने वाला, मैंने उल्फत में मुनाफे का नहीं सोचा था, मैंने उल्फत में मुनाफे का नहीं सोचा था, मेरा नुकसान ज्यादा नहीं होने वाला, मैंने उल्फत में मुनाफे का नहीं, बहुत शुक्रिया भाई, मैंने उल्फत में मुनाफे का नहीं सोचा था, मेरा नुकसान ज्यादा नहीं होने वाला, उससे कहना कि मेरा साथ निभाए आकर,
1: उससे कहना
0: कि मेरा साथ निभाए आकर, मेरा यादों से गुजारा नहीं होने वाला, उससे कहना कि मेरा साथ निभाए आकर, मेरा यादों से गुजारा नहीं होने वाला, वो हमारा है, हमारा है, हमारा है फकत, वो हमारा है, हमारा है, हमारा है फकत, बावजूद इसके हमारा नहीं होने वाला, वो हमारा है, हमारा है, हमारा है फकत, बावजूद इसके हमारा नहीं होने वाला, आज उठा है मदारी का जनाजा लोगों, आज उठा है मदारी का जनाजा लोगों, कल से बस्ती में तमाशा नहीं।
1: हाय हाय हाय हाय, अरे हिमांशी क्या कहने, अरे आप फिर आइए, अभी कहाँ जाने देंगे। ये इस शेर का जो सबसे खासियत है ऐसे अशार की, कि जिनमें एकदम नया ख्याल हो, जो पहले न सुना हो, उसकी एक खास तौर से दाद देनी चाहिए। एक बार फिर हिमांशी ये शेर, तुम्हारा नाम उतारूंगा मैं माइक से,
3: माइक का नाम
1: बताऊंगा। ये शेर फिर से सुनाइए पिछले शेर के साथ।
0: वो हमारा है, हमारा है, हमारा है फकत, वो हमारा है, हमारा है, हमारा है फकत, बावजूद इसके हमारा नहीं होने वाला। आज उठा है मदारी का जनाजा लोगों,
1: क्या अच्छा मिसरा है।
0: आज उठा है मदारी का जनाजा लोगों, कल से बस्ती में तमाशा नहीं।
1: हाय हाय हाय हाय हाय भाई, जियो हिमांशी, जियो, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या अच्छा और शेर कह दिया, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
0: एक मतलब
1: एक बार फिर पढ़ो, एक बार फिर पढ़ो ये शेर, वाह।
0: आज उठा है मदारी का जनाजा लोगों, कल से बस्ती में तमाशा नहीं होने
1: वाला। आए हाय आए हाय आए हाय, वाह वाह।
0: साथ देने का दिलाया था भरोसा तूने,
1: साथ देने का दिलाया,
0: साथ देने का दिलाया था भरोसा तूने, और फिर छोड़ दिया मुझको अकेला तूने। साथ देने का दिलाया था भरोसा तूने, और फिर छोड़ दिया मुझको अकेला तूने, अपनी मर्जी से मुझे छोड़ के जाने वाले।
1: वाह,
0: मेरी मर्जी को कहाँ छोड़ दिया था तूने,
1: क्या कहने, क्या
0: अपनी मर्जी से मुझे छोड़ के जाने वाले, मेरी मर्जी को कहाँ छोड़ दिया था तूने, बात रुखसार की होती तो कोई बात न थी।
1: बात रुखसार की होती,
0: बात रुखसार की होती तो कोई बात न थी, आज तो रूह पे मारा है तमाचा तूने।
1: हाय हाय हाय हाय, अरे भाई वाह वाह वाह वाह वाह।
0: बात रुखसार की होती,
1: जनाब हाशिम फरोजाबादी साहब,
0: बात रुखसार की होती तो कोई बात
1: ना, नवाज रहे हैं आपको।
0: आज तो रूह पे मारा है तमाचा तूने, हाय अफसोस तुझे अब भी ये मालूम नहीं। हाय अफसोस
1: तुझे
0: अब भी ये मालूम नहीं, जिंदगी मेरी बना दी है तमाशा तूने।
1: वाह,
0: हाय अफसोस तुझे अब भी ये मालूम नहीं, जिंदगी मेरी बना दी है तमाशा तूने। आखिरी गजल, कैसा सिला मिला है मुझे ऐतबार का, कैसा सिला मिला है मुझे ऐतबार का, मुँह देखती हूँ रोज तेरे इंतजार का।
1: वाह,
0: कैसा सिला मिला है मुझे ऐतबार का, मुँह देखती हूँ रोज तेरे इंतजार का, मैं राहे बेवफाई से थोड़ी ही दूर थी, मैं राहे बेवफाई से थोड़ी ही दूर थी, फिर आ गया ख्याल मुझे तेरे प्यार का।
1: क्या कहने, क्या कहने,
0: मैं राहे बेवफाई से थोड़ी ही दूर थी, फिर आ गया ख्याल मुझे तेरे प्यार का, हालांकि एक शख्स से बिछड़ी हूँ बार बार, हालांकि एक शख्स से बिछड़ी हूँ बार बार, वैसे ये काम था तो नहीं बार बार का। हालांकि एक शख्स से बिछड़ी हूँ बार बार,
1: क्या क्या शेर सुना रही है, वाह वाह।
0: वैसे ये काम था तो नहीं बार बार का, तुम जा रहे हो बात मुकद्दर पे टाल कर, तुम जा रहे हो बात मुकद्दर पे टाल कर, मैं क्या करूँ बताओ दिल बेकरार का।
1: वाह,
4: और दोस्तों ये थी हमारी आज की मेहमान, और आप थी हिमांशी बाबरा। मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ सामईन का जिन्होंने इसे सराहा है। मुझे अपनी राय से ज़रूर मुत्तला कीजिएगा। साथ ही साथ मैं एक बात भी अर्ज़ करता चलूँ कि मुशायरों में निज़ामत हर एरा गैरा नथु खैरा नहीं कर सकता। जैसे आज नाज़िम मुशायरा थे और निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे कि वो बार बार शायर को सामईन से जुदा कर देते थे अपनी बेवक्त गुफ्तगू करके और बेवक्त सराहना। बढ़ते हैं कमर्शियल की जानिब।
5: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
7: And the winner is...
8: Your business being heard on the radio.
9: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
10: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
7: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95BR, 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
11: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
10: सोफी ज्वेलर्स?
11: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
10: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
13: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627229627222।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
14: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
15: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
14: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
15: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
16: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM, and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: हाँ मैं लगाता हूँ, सबके जागे लता। हाँ हाँ, अलका का लगा दूंगा, कुमार सानू की प्रोग्राम बंद कर देते हैं।

0: और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, मैं हूँ रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। इससे पहले कि हम आपको लैया पंजाब पाकिस्तान में नज़ीर अहमद साहब के तोहफे की जानिब लेकर चलें, हमारी खुशनसीबी है हमारे मोहतरम लिसनर और कॉलर जनाब शकील साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और आज की इस बज़्म की रौनक बढ़ाने के लिए अभी आप उनकी खूबसूरत आवाज़ सुनेंगे। शकील भाई हमारे बांदे से तशरीफ लाते हैं, आइए हम सब मिलके उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। शकील भाई कैसे हैं?
1: अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है, आपकी दुआएं हैं, सब ठीक है, आप सुनाए कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल व करम है,
1: शुक्र है। तो तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: जिनमें खालिद सलीम मीर साहब और सूफी अब्दुल करीम साहब और खालिद शाम है, रिजवान रिजवी, उनकी अलिया है, चौधरी रुखसार साहब है, नवीद भाई, हमायूं परवेज साहब, हाशमी आसवाल है, तौसीफ अहमद है, मजीद भाई, वसीम शाह है, फिजर भाई, अलाज शफिया नकवी साहब है, महबूब अलाई शाह साहब, सबको
0: आपके तमाम अहबाब तक आपका
1: नवीद भाई, हमायूं परवेज साहब, हाशमी आसवाल है, तौसीफ अहमद है, मजीद भाई, वसीम शाह है, फिजर भाई, अलाज शफिया नकवी साहब है, महबूब अलाई शाह साहब, सबको मैं तरह से अस्सलाम वालेकुम।

0: जाना मुश्किल है।
1: क्या नादिर ख्याल है, क्या मतला है साहब, बता कीजिए।
0: दिल के जज्बात को सीने में छुपाना मुश्किल है। अपना घर अपने ही हाथों से जलाना मुश्किल है।
1: वाह वाह वाह,
0: कैफियत दिल की तो चेहरे से यहाँ होती है।
1: कैफियत दिल की तो चेहरे से आया होती है।
0: इश्क और मुश्क को मगर छुपाना
1: मुश्किल है, सच्ची बात है। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
0: कैफियत दिल की तो चेहरे से
1: आया होती है।
0: इश्क और मुश्क को मगर छुपाना
1: मुश्किल है। वाह वाह वाह वाह।
0: मुश्किलें आज भी कुछ कम नहीं इंसान के लिए।
1: आहा,
0: मुश्किलें आज भी कुछ कम नहीं इंसान के लिए। आने वाला है मगर और जमाना मुश्किल है।
1: वाह वाह वाह वाह, आने वाला है मगर और जमाना मुश्किल है। वाह वाह वाह वाह।
0: जिसको अल्लाह ने बख्शी है अनायत अपनी,
1: जिसको अल्लाह ने बख्शी है इनायत अपनी,
0: उसको दुनिया की निगाहों में गिराना मुश्किल
1: है। मुश्किल है, क्या सच्चा शेर है, अता कीजिए अता कीजिए।
0: जिसको अल्लाह ने बख्शी है अनायत अपनी,
1: आहा,
0: दुनिया की निगाहों में गिराना मुश्किल है।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: एक जा कातिल व मुनसिफ को मिलते देखा है।
1: एक जा कातिल मुनसिफ को मिलते देखा है।
0: अब तो इंसाफ अदालत से ले पाना मुश्किल है।
1: सही बात है, सही बात है, जब मिलते देख लिया। वाह वाह वाह वाह।
0: एक जा कातिल मुनसिफ को मिलते देखा है।
1: आहा,
0: अब तो इंसाफ अदालत से ले पाना मुश्किल है।
1: आहा,
0: शेर कहते हैं,
1: अच्छा कीजिए।
0: पेट की आग तो बुझ सकती है खाने से सबर।
1: आहा,
0: पेट की आग तो बुझ सकती है खाने से समर, इश्क की आग को फिर भी बुझाना
1: मुश्किल है। भाई मक्ता आता कीजिए। वाह वाह।
0: पेट की आग तो बुझ सकती है खाने से समर,
1: आहा,
0: इश्क की आग को फिर भी बुझाना मुश्किल है।
1: वाह वाह वाह वाह, भाई क्या मुरस्सा गजल। वाह वाह वाह वाह वाह।
0: तो एक गजल है सैयद ममन नकवी है लिखने वाले।
1: जी जी, जरूर अता कीजिए।
0: वो कहते हैं, इस दर्जा है क्यों मुझ पे अनायत कोई पूछे।
1: इस दर्जा है क्यों मुझ पे इनायत कोई पूछे।
0: क्या अब है मेरे सर की जरूरत कोई पूछे।
1: आहा, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
0: इस दर्जा है क्यों मुझ पे अनायत
1: कोई पूछे।
0: क्या अब है मेरे सर की जरूरत कोई पूछे।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: क्या हो गई आपस की मोहब्बत कोई पूछे।
1: आहा,
0: क्या लुट गई इस शहर की हुरमत कोई पूछे।
1: पूछे, क्या लुट गई इस शहर की मुरव्वत कोई पूछे। वाह वाह वाह वाह।
0: शुक्रिया। ऐवान सियासत के झरोकों से पलट कर।
1: ऐवान सियासत के झरोकों से पलट कर।
0: मुझसे तो मेरे देश की
1: हालत कोई पूछे। वाह वाह वाह वाह।
0: ऐवान सियासत के झरोखों से पलट कर, मुझसे तो मेरे देश की हालत कोई पूछे।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: जो सुबह के तारे की तरह डूब रहा हो।
1: आहा, जो सुबह के तारे की तरह डूब रहा हो।
0: काश उससे अंधेरों की मसाफत
1: कोई पूछे। भाई वाह वाह, आता कीजिए। भाई वाह वाह, क्या तशबीहात हैं। सुबह का तारा
0: तारे की तरह डूब रहा हो।
1: काश
0: उससे अंधेरों की मुसाफत कोई पूछे। जब वक्त को मुट्ठी में जकड़ ही नहीं सकते।
1: जब वक्त को मुट्ठी में जकड़ ही नहीं सकते।
0: क्यों करते हो लम्हों की हिफाजत कोई
1: पूछे। आहा, भाई वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। जब लम्हों को,
0: जब वक्त को मुट्ठी में जकड़ ही नहीं सकते।
1: जब वक्त को,
0: क्यों करते हो लम्हों
1: की इबादत कोई पूछे।
0: हर संत है सिर्फ नमक पाशों की यलगार।
1: हर संत है सिर्फ नमक पाशों की यलगार।
0: मुझसे मेरे जख्मों की मलाहत कोई पूछे।
1: आहा हा हा।

0: हर संत है, वाह वाह अता कीजिए अता कीजिए।
1: हर संत से है,
0: हर संत है
1: बादशाह की
0: यलगार,
1: मुझसे मेरे जख्मों की
0: मलाहत कोई पूछे, वाह वाह वाह वाह।
1: हर चीज दिखा देते हैं ये आंखों के रोजन,
0: आहा
1: हर चीज दिखा देते हैं
0: ये आंखों के रोजन,
1: कब छुपती है अंदर की कदूरत
0: कोई पूछे, वाह वाह वाह वाह भाई बहुत खूबसूरत, वाह वाह वाह वाह।
1: जिस पेड़ के साए में जमीन रहती है ठंडी,
0: जिस पेड़ के साए में जमीन रहती है ठंडी,
1: उससे कभी सूरज की तमाशत
0: कोई पूछे, भाई वाह वाह वाह वाह भाई वाह वाह वाह वाह आता कीजिए। जिस पेड़ के साए में
1: जमीन रहती है ठंडी, उससे कभी सूरज की तमाशत कोई पूछे,
0: खूबसूरत शेर, वाह वाह वाह वाह।
1: आखिरी शेर कहते हैं
0: जी अता कीजिए।
1: हर शख्स ही बीमार है इस शहर में नकवी,
0: हर शख्स ही बीमार है इस शहर में नकवी,
1: किस किस से भला उसकी तबीयत कोई
0: कोई पूछे, भाई वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: हर शख्स ही बीमार है
0: इस शहर में नकवी,
1: किस किस से भला उसकी तबीयत
0: कोई पूछे, बहुत खूबसूरत इंतखाब। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत से रखे, और आपके लिए सलाम भेजा है परदेसी मजीद साहब ने खालियां गुजरात पाकिस्तान से। आमीन आमीन। तो शकील भाई आहमद का शुक्रिया, मैंने आपका गीत नोट कर लिया है, जरूर शामिल प्रोग्राम करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।

दोस्तों ये तोहफा था लैया पंजाब गुजरात में नज़ीर अहमद साहब का। और अब हम बढ़ रहे हैं आपको लेकर बंडल लिए चलते हैं, जहां हमारे बड़े मोहतरम लिसनर जनाबे शकील साहब मौजूद हैं और सुनना चाहते हैं ये खूबसूरत गीत। मैं दिल की तमाम तर गहराइयों से शकील भाई आपका शुक्रगुजार हूं कि आप जिस मोहब्बत चाहत और प्यार से हमारे प्रोग्राम की जीनत और तौकीर बढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाते हैं, ये हमारे लिए बाइस मुसर्रत है। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत से रखे और नज़रें बद से बचाए। आपकी पसंद का गीत लेकर हाजिर हूँ, कबूल फरमाइए।

अभी अभी हमारे बर्न की रौनक बढ़ाने के लिए तशरीफ लाए हैं हमारे मोहतरम सादा दिलकश शख्सियत के मालिक मोहम्मद अयूब चौहान, जिनसे आपकी मुलाकात होगी कमर्शियल के वक्फे के फौरन बाद। देखते हैं आज वो आपके लिए क्या तोहफा लाए हैं। लीजिए कमर्शियल की जानिब बढ़ते हैं।

0: Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274-306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 एएम ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 4283 49 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 13

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
3: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
3: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
3: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: दोस्तों, इससे पहले कि हस्ब वादा हम आपको खाड़ियाँ गुजरात पाकिस्तान लेकर चलें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कमर्शल से कबल कि हमारे बड़े खूबसूरत, सादा और दिलकश शख्सियत के मालिक मोहम्मद अयूब चौहान साहब ओल्डहम से हमारे दरमियान मौजूद हैं, लाइन पर हैं। आइए देखते हैं आज वो आपके लिए क्या तोहफा लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम।
10: वालेकुम सलाम रिफत बास भाई, आप ठीक हैं?
9: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं अयूब?
10: मैं भाई ठीक ठाक हूँ। आपकी आवाज़ बहुत ही कम आ रही है, मैं लैंड लाइन से फोन कर रहा हूँ।
9: अब आ रही है आवाज़?
10: जी बहुत कम आ रही है।
9: अब आ रही है?
10: अभी भी कम है।
9: अच्छा चलिए, लेकिन पहुँच रही है आप तक,
10: तो चलो मैं सुना देता हूँ। बड़ा शायद कुछ बातों की मुझे समझ ना लगे, पर मैं सुना देता हूँ शायरी।
9: सुनाइए सुनाइए।
10: रुखसत हुआ तो बात मेरी मान कर गया,
9: हुआ तो बात मेरी मान कर गया,
10: जो उसके पास था वह मुझे दान कर गया। बिछड़ा कुछ इस अदा से के रुत ही बदल गई,
9: बिछड़ा कुछ इस अदा से के रुत ही बदल गई।
10: एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया।
9: वाह वाह वाह वाह।
10: दिलचस्प वाकया है कि कल एक अजीज दोस्त अपने मफाद पर मुझे
9: कुर्बान कर गया। वाह वाह वाह वाह। अयूब ये शेर दोबारा पढ़ दीजिए, बहुत खूबसूरत शेर है।
10: दिलचस्प वाकया है कि कल एक अजीज दोस्त अपने मफाद पर मुझे कुर्बान कर गया।
9: वाह वाह वाह वाह।
10: कितनी सुधर गई है जुदाई में जिंदगी,
9: कितनी सुधर गई है जुदाई में जिंदगी।
10: हाँ वो जफा से मुझ पे तो एहसान कर गया।
9: एहसान कर गया। वाह वाह वाह वाह। खालिद में बात बात पे कहता था जिसको जान,
10: वो शख्स आखिर मुझे बेजान कर गया।
9: वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छा इंतखाब। वाह वाह वाह वाह।
10: खालिद श्री सही कौर है
9: जी जी, पढ़िए।
10: अच्छा इस रहा कि अच्छा वो गाना नहीं है ये फिल्म साजन की सहेली का?
9: अच्छा खालिद शरीफ साहब ने लिखा है?
10: नहीं लिखवाया नहीं है। फिल्म का नाम है साजन की सहेली
9: जी,
10: जिसके लिए सबको छोड़ा।
9: जिसके, ठीक है मैंने लिख लिया, आप पढ़िए
10: जी।
9: मैंने लिख लिया है, आप पढ़िए शेर।
10: अच्छा लिख लिया है
9: जी जी।
10: अच्छा तो एक और गजल सुना देता हूँ।
9: जी जी जरूर।
10: उससे पहले के गवा दें तुमको,
9: आहा
10: उससे का तारा बना दें तुमको।
9: वाह वाह वाह वाह।
10: फैसला करके बदल जाते हैं,
9: आहा
10: रोज कहते हैं बुला दें तुमको।
9: वाह वाह वाह वाह।
10: उसन देखा तेरी आंखों का कब?
9: उसने देखा तेरी आंखों का कब?
10: कच्ची नींद से जगा दिया तुमको।
9: वाह,
10: हम तेरे नाम का कशकोल लिए।
9: हम तेरे नाम का कशकोल लिए।
10: शहर दर शहर सदा दे तुमको।
9: आहा, शहर दर शहर सदा दे तुमको।
10: एक बेनाम जजीरे को चलें।
9: एक बेनाम जजीरे को चलें।
10: बाद वहाँ अपना बना दे तुमको।
9: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा।
10: उम्र भर तुमको परेशान ना किया।
9: उम्र भर तुमको परेशान ना किया।
10: अब भला कैसे रुला दे तुमको।
9: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, ये बहुत उम्दा।
10: अपने दिल में है तुम्ही से रौनक।
9: अपने दिल में है तुम्ही से रौनक।
10: कैसे मंद से उठा दे तुमको।
9: आहा,
10: ऐसा एक लम्हा ना आए अरशद।
9: ऐसा एक लम्हा ना आए अरशद।
10: अपनी नजरों से गिरा दे तुमको।
9: वाह वाह वाह वाह, भैया आखिरी शेर दोबारा पढ़िए।
10: ऐसा एक लम्हा ना आए अरशद, अपनी नजरों से गिरा दे तुमको।
9: वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत इंतखाब है।
10: तो ये तो शायरी थी, तो वैसे भी मैंने कोशिश पूरी की है, वैसे मोबाइल से लाइन अच्छी आवाज अच्छी आती है, इसमें आई नहीं है। पता नहीं कि मैं आज अपनी आरामगाह में हूँ ना, वहाँ से कुछ जिंदगी के काम मसरूफ हो, और मैं कल भी शायद मसरूफ ही हूँ, तो अगर ना हो सका तो फिर सोच लीजिएगा, मैं मसरूफ है, कोशिश करूंगा।
9: जरूर सर, आंखों पर आपकी आमद का बहुत शुक्रिया।
10: मैं सोच रहा हूँ कि वो खालिद मीर साहब, मैंने तो मैनेज कर लिया, वो चारे खालिद मीर साहब कैसे मैनेज करते होंगे।
9: हाँ, वो तो बेचारे सुनते ही कम है।
10: ओके, अल्लाह हाफिज़।
9: अल्लाह हाफिज़। अल्लाह
10: हाफिज़ सबको, हमारी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम।
9: ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
10: खुदा हाफिज़।
9: खुदा हाफिज़। और आइए दोस्तों, बेइंतहा पसंद फरमाया है परदेसी मजीद साहब ने अयूब साहब के कलाम को, और अब हम चल रहे हैं परदेसी मजीद साहब के तोहफे की जानिब, खाड़ियाँ गुजरात पाकिस्तान।

और दूसरी पसंद थी हमारी प्यारी सी बहना शहनाज की, आवाज़ लुबना नदीम की थी। और अब हम आपको लिए चल रहे हैं मिडिल्स बड़ा, जहां ब्रेडफोर्ड से उनके लिए तोहफा पहुंच रहा है। लाई हैं हमारी बावची खाने की रानी प्यारी सी बिटिया सुमैरा ब्रेडफोर्ड 3 से, और कहती हैं कि ये तोहफा मैं अपनी तमाम कजन्स के नाम करना चाहती हूँ जो आपको मिडिल्स बड़ा में सुन रही हैं। जीती रहिए, अल्लाह ताला आपकी और आपकी कजन्स की ये अंडरस्टैंडिंग यूं ही सलामत रखे और नजरे बद से बचाए। तोहफा हाजिर है, कबूल कीजिए।

0: और दोस्तों आप सुन रहे हैं बेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में ऑनलाइन www.bedfordasianradio.co.uk पर सुना जा रहा है। वक्त हुआ जा रहा है कमर्शियल्स का।
1: 3 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
1: You're listening to Bradford Asian Radio,
2: 1413 AM and online.

के आसमान पे है, वो मेरे ख्वाबों में ख्यालों के आसमान पे है, उसी के जिस्म की खुशबू नसीब हो जाए, जो दिल में है वो निगाहों से साफ कह दीजिए, जो दिल में है वो निगाहों से साफ कह दीजिए, तो फिर ये सैफ बड़ा खुश नसीब हो जाए, जो दिल में है वो निगाहों से साफ कह दीजिए, तो फिर ये सैफ बड़ा खुश नसीब हो जाए। सैफुद्दीन सैफ का ये खूबसूरत कलाम डॉक्टर माहरुख साहिबा ने अदब के शहदाइयों के नाम भेजा था, और अब हम चलते हैं उस गज़ल की जानिब जिसे डॉक्टर साहब ने आज सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है। डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बेइंतहा शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत से रखे, खुश रखे और अपने हिज़्ज़ामान में रखे। इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे ओल्डम मोहम्मद अय्यूब चौहान साहब के तोहफे की जानिब, लेकिन अभी डॉक्टर साहब आपका तोहफा लेकर हाजिर हूँ, कबूल फरमाइए।

दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले हमारे बाजू में शामिल हुए हैं हमारे काबिल इज्जत एहतराम लिसनर शहरयार साहब नॉर्थ हॉल्ट लंदन से, और अपने अहल खाना के साथ वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत और मुंतखब कलाम भेजा सैफुद्दीन सैफ का, क्या मुमकिन है कि ये गज़ल आप हमें सुनवा दें? डॉक्टर साहब का इंतखाब लाजवाब होता है। बहुत शुक्रिया शहरयार भाई, ज़रूर हम जिस मोहब्बत चाहत और प्यार से आप हमारी बज़्म में शामिल होते हैं

दोस्तों प्रोग्राम क्योंकि अख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है तो हम आपको लिए चलते हैं नॉर्थ हॉल लंदन और शहरयार साहब और उनके अहले खाना की ख्वाहिश पर हम सैफुद्दीन सैफ की ये खूबसूरत गज़ल खां साहब उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में उनकी नज़र कर रहे हैं और उम्मीद है कि आइंदा भी आप हमारे प्रोग्राम को यही इज्जत तौकीर बख्शते रहेंगे और तशरीफ़ लाकर इसमें इजाफा करते रहेंगे। तोहफा हाजिर है, कबूल कीजिए।

दोस्तों, इस खूबसूरत गज़ल के साथ ही गज़ल उसने छेड़ी अब इख्तिताम पज़ीर हुआ। मैं बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ अपने उन तमाम अहबाब का कि जिनकी आमद ने हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाए और इसकी इज्जत और तौक़ीर में इजाफा किया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, नज़रे बद से बचाए और सेहत से रखे। ज़िंदगी रही तो कल इंशाअल्लाह एक मरतबा फिर ये महफिल सजेगी, आप होंगे, हम होंगे और ये शाम होगी। उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मोहब्बतों के पैगंबर रिफत अब्बास को अब गज़ल उसने छेड़ी से इजाज़त दीजिए। आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह हाफिज़ व नासिर। शब्ब खैर, फ़ी अमानिल्लाह।

0: online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio.
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
11: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अब लिए एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio,
7: 1413 AM and online.
8: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
9: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
11: दुबई ज्वेलर्स,
13: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
14: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दूल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3499, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रैडफोर्ड 495555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
1: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
13: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
3: You're listening to
14: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3499, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
10: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
11: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229627222।
10: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
11: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने एशियन वेडिंग्स UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी

अस्सलाम वालेकुम सामीन, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ ये नशात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ ये नशात आप डेब पे भी सुनते हैं। जी डेब प्लस पे आप हमें BFD एशियन रेडियो के नाम से ब्रेडफोर्ड और इसके आउटस्कर्ट्स में सर्च कर सकते हैं। जी हाँ, जितनी भी गाड़ियाँ तकरीबन 2017-18 के बाद आई हैं उन सभी में डेब प्लस की सहूलत मौजूद है। शायद उससे पहले वाली गाड़ियों में आपको ये रेडियो सुनने को ना मिले, लेकिन वहाँ पे आप हमें AM पे सर्च कर सकते हैं और नई गाड़ियों में आप हमें डेब पे सर्च कर सकते हैं। वॉइस क्वालिटी का ज़ाहिर फ़र्क होता है, डेब की क्वालिटी थोड़ी बेहतर होती है और जो AM की क्वालिटी है वो हालांकि फ्रीक्वेंसी खासी लॉन्ग रेंज होती है लेकिन साउंड क्वालिटी शायद FM जितनी अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी सुनने के काबिल होती है। हम तो इंजॉय करते थे, असल तो रेडियो ही AM होता था। ये चीज़ें तो आजकल यूं कह लीजिए कि टेम्परेरी हैं, जो असल फ्रीक्वेंसी थी जब रेडियो की शुरुआत हुई थी तो वो सारी AM और मीडियम वेव और लॉन्ग वेव फ्रीक्वेंसी थी, और शॉर्ट वेव तो वो फ्रीक्वेंसी थी कि दुनिया के किसी भी मुल्क में आपको सुना जा सकता था। लेकिन फिर हालात बदले, तकाजे बदले, बहरहाल बात तवील होती जा रही है। आपको बताते चलें कि अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो तो आप हमारा स्मार्ट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप आईफोन इस्तेमाल करते हो चाहे आप एंड्रॉयड, दोनों पे हमारे ऐप्स भी मौजूद हैं। और सामीन, अब प्रोग्राम रंगे महफिल, ये आपके मेज़बान सैयद हसन आज़र हैं और अपने सभी सुनने वालों की खिदमत में अपने दिल की अथाह गहराइयों से खलुस पर आदाब पेश करते हैं, तस्लीमात। उम्मीद करते हैं कि आप इस वक्त जहाँ कहीं भी हमारी ये आवाज़ सुन रहे होंगे, अल्लाह पाक के फजल करम से आप सभी बखैर वाफियत होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को सेहत व सलामती दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और अगर आज तबीयत कुछ अच्छी नहीं है तो हमारी बहुत सी दुआएं कि अल्लाह पाक आपको सेहत व सलामती दे, आमीन। और सामीन, हमारी इस वक्त की नशात आप लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पर और CVFM मिल्सब्रा से 104.5 FM के जरिए भी समाप्त फरमा सकते हैं। और अगर आज के इस प्रोग्राम में आप शिरकत फरमाना चाहें तो आप कॉल भी कर सकते हैं, स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं, बड़े बड़े बच्चे बच्चे मर्द व ख़वातीन सभी जानते हैं कि स्टूडियो का नंबर है 01274306677, 01274 एरिया कोड है और स्टूडियो का नंबर है 3066 70 306677। और अगर आप WhatsApp के ज़रिए भी इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहें तो भी वेलकम, खुश आमदेद। WhatsApp के लिए हमारा कंट्री कोड है 00447 800 599 563, दैट्स 00447 800 599 563। आइएगा और अपनी फरमाइशें पहुँचाइएगा ताकि आपसे बातचीत करके आपकी फरमाइशें इस प्रोग्राम का हिस्सा बना के हमेशा दिली खुशी होती है और आपसे बातचीत का एक बहाना बन जाता है।

सामीन, आइए आज का पहला गीत आप सभी सुनने वालों को नाम करते हैं जो कि हमारी नशात के रेगुलर कॉलर्स हैं, रेगुलर समात फरमाते हैं। जी चाहता है छेड़ के हूँ उनसे हम कलाम, जी चाहता है छेड़ के हूँ उनसे हम कलाम, कुछ तो लगेगी देर सवालों जवाब में। जी चाहता है छेड़ के हूँ उनसे हम कलाम, कुछ तो लगेगी देर सवालों जवाब में।

जी सामिन, खूबसूरत गीत आप सुनने वाले सुन रहे थे। राह में उनसे मुलाकात होगी, जिससे डरते थे वही बात हो गई। कहते ना कि हमारी राह में गहरा अना का खड भी था, हमारी राह में गहरा अना का खड भी था, उसी में गिरने का डर था हमें, उसी में गिरे। शायरी थी जमीर काजमी की, मौसीकी थी अनु मलिक की, आवाज़ थी कुमार सानू और अलका याग्निक की। खूबसूरत गीत था, आप खूबसूरत सुनने वालों के नाम। और जहाँ तक सामीन मुलाकात का ताल्लुक है, मुलाकात की कहानी है, तो मुलाकात की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। एक वो मुलाकात होती है जो आपकी सरेराह हो जाती है और उसमें आप कुछ भी आप प्लान्ड नहीं कह सकते, आपने कुछ सोचा समझा नहीं होता, और वही सच्ची मुलाकात होती है और वही अच्छी मुलाकात होती है और वो बिल्कुल नेचुरल होती है, कुदरती होती है, उसमें कुछ तसन्नो बनावट बिल्कुल नहीं होती। लेकिन जो ऑर्गेनाइज करके मुलाकात की जाती है उसमें अक्सर बनावट होती है, मिलावट होती है, रख रखाव होता है, और उसमें वो जेन्युइननेस नहीं होती जो कि सरेराह मुलाकात में होती है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि मुलाकात ही वही होती है जो राह में चलते चलते हो, क्योंकि वो मुलाकात ही क्या कि जिसका हर तरह से आपने एहतमाम कर रखा है, आपने सोच रखा है कि वो ये कहेगा तो हम ये कहेंगे, वो ये कहेगा तो हम ये कहेंगे, उसमें तो सारे का सारा एक ड्रामाबाजी हो जाएगी। और प्लान्ड जिस तरह आजकल पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं, सारी की सारी सिचुएशन पहले से तय, और सिर्फ और सिर्फ सरकारी जो फंड्स हैं अरबों खरबों में वो ज़ाया किए जाते हैं, हालांकि पहले से तय होता है कि अब इस बार हमने खेल क्या खेलना है। बिल्कुल वही है जो प्लान्ड मुलाकात होती है। इसलिए मेरा ज़्यादा मानना है कि जो राह में मुलाकात हो वो ज़्यादा अच्छी होती है, ना कि जो आप कहीं पे तय करके मुलाकात करते हैं उससे। और जी चाहता है इसी हवाले से एक और गीत सुन लें, क्या ख्याल है? चलते चलते और राह में मुलाकात के हवाले से जो अगला गीत जहन में आ रहा है वो ज़रा बताइएगा कौन सा गीत हो सकता है। चलिए, आपको क्या पहली बजवाना, आपको गीत ही सुना देते हैं हम।

0: चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। सामीन, शायरी थी जनाब कैफी आजमी की, मौसीकी थी गुलाम मोहम्मद की, आवाज थी लता की, फिल्म का नाम था पाकीज़ा। उम्मीद करता हूँ कि गीत आप सभी सुनने वालों को पसंद आया होगा। जी हाँ, क्या ही कहते हैं कि अपने जमाने की यादगार फिल्म थी पाकीज़ा, और इसके कमोबेश सभी के सभी गीत हिट हैं। और जो आज का हमारा उन्वान था उसके एतबार से बहुत ही खूब गीत था। जो मुलाकात होती है वो सरेराह अच्छी होती है, या फिर जो तय करके मुलाकात की जाती है वो बेहतर होती है। तो उस एतबार से हम समझते हैं कि जो सरेराह होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि उसमें बिल्कुल आप बेतकल्लुफ़ होते हैं, कोई उसमें बनावट तसन्नो नहीं होता। जबकि जो तयशुदा मुलाकात होती है उसमें बहानाबाजियाँ सब कुछ उसमें शामिल होता है। तो आप भी ये ज़ारे ख्याल कर सकते हैं, जब आप लाइव कॉल्स में आएंगे तो ज़रूर बताइएगा मुलाकात के हवाले से आपके क्या विचार हैं, क्या ख्याल आते हैं, क्या सोच विचार है आपकी। और सामीन, अब थोड़ी देर में हम चलते हैं ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद आपके लिए फिर हाजिर हो जाएंगे। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677 ब्रेडफोर्ड, एरिया कोड है 01274, स्टूडियो का नंबर है 306677, व्हाट्सएप है 00447 800 599 563 00447 800 599 563। आइए चलते हैं ब्रेक पे।
1: You're listening to Bradford Asian Radio
2: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: And the winner is.
5: And the winner is.
6: And the winner is.
4: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड BD95VR 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलेन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future. future.
6: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

और सामीन अभी आप मलका इतरनम नूर जहाँ की आवाज़ में गीत सुन रहे थे। उम्मीद करते हैं कि गीत आप सुनने वालों को पसंद आया होगा। और अब एक और गीत है, शायरी है समीर की, मौसीकी है हमेश रश्मिया की, आवाज उदित नारायण अलका याग्निक। सिलसिले मुलाकातों के ना तोड़िएगा। कहते ना कि कभी कभी के यार आने भले मालूम होते हैं, मुलाकातें मुसलसल हों तो दिलचस्पी नहीं रहती।

तोड़ गया रिश्ते तो सारे ही वो जाते जाते, तोड़ गया रिश्ते तो सारे ही वो जाते जाते, वरना इतने तो मरासम थे कि आते जाते। और सामीन, खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आप सुनने वालों को पसंद आ रहा होगा। एक दो गीत और होंगे ब्रेक से पहले, और उसके बाद चलेंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद आप सुनने वालों का वक्त होगा जिसमें आप तशरीफ लाएंगे, कॉल्स करेंगे और आपसे बातें होंगी, आपकी शायरी होगी। और आइए अब आपको एक और खूबसूरत गीत सुनाते हैं मुलाकात के हवाले से।

गीत खूबसूरत है, लेकिन आप जानते हैं कि जो उर्दू और हिंदी का फ़र्क होता है वो बड़ा ही बेमिसाल फ़र्क होता है। हम उर्दू में लिखते हैं कि किसी रोज़ तुमसे मुलाकात होगी, लेकिन हिंदी में अक्सर लिखा होता है कि किसी रोज़ तुमसे मुलाकात होगी। चलिए, ये लफ्ज़ रोज़ है या रोज़ है, आप पे छोड़ते हैं और आपको सुनाते हैं ये खूबसूरत गीत। और सामिन, इस गीत के बाद हम चलेंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद आप सुनने वालों की लाइव कॉल्स होंगी, ज़रूर तशरीफ लाइएगा। नंबर आपकी यादहानी के लिए एक बार फिर बता देते हैं, 01274306677 ब्रेडफोर्ड एरिया कोड है, 01274306677। और आपको बताते चलें कि अगर व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप शिरकत फरमाना चाहें तो आप शिरकत कर सकते हैं, 00447-800-599-563 00447-800-599-563। आपको वेलकम करके खुश आमदेद कह के हमें दिली खुशी होगी।

0: winner is...
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 14:13 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
7: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
7: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
7: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
7: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड 3

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर कोई
4: राइड, कॉल टुडे 01274201679 और विजिट safewayrider.co.uk। सेफवे राइडर, हेल्पिंग यू सिक्योर योर फ्यूचर।

भरे जहां में कोई मेरा यार था ही नहीं, भरे जहां में कोई मेरा यार था ही नहीं, किसी नजर को मेरा इंतजार था ही नहीं। भरे जहां में कोई मेरा यार था ही नहीं, किसी नजर को मेरा इंतजार था ही नहीं। न ढूंढिए मेरी आंखों में रत जगूं की थकन, न ढूंढिए मेरी आंखों में रत जगूं की थकन, ये दिल किसी के लिए बेकरार था ही नहीं। न ढूंढिए मेरी आंखों में रत जगूं की थकन, ये दिल किसी के लिए बेकरार था ही नहीं। सुना रहा हूँ मोहब्बत की दास्तां उसको, सुना रहा हूँ मोहब्बत की दास्तां उसको, मेरी वफा पे जिसे एतबार था ही नहीं। सुना रहा हूँ मोहब्बत की दास्तां उसको, मेरी वफा पे जिसे एतबार था ही नहीं। और कतील कैसे हवाओं से मांगते खुशबू, कतील कैसे हवाओं से मांगते खुशबू, हमारी शाम में जिक्रे बहार था ही नहीं। भरे जहां में कोई मेरा यार था ही नहीं, किसी नजर को मेरा इंतजार था ही नहीं।

0: और सामीन आप टेलीफोन लाइन पे मैनचेस्टर से जनाब रुखसार चौधरी साहब तशरीफ ला चुके हैं, खुश आमदेद कहते हैं जनाब रुखसार चौधरी साहब को। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम।
1: और नहायत वाजिब इत्राम वाजिब साहब सदर ग्रामी कदर और हर दिल जी शख्सियत पीर हसन शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। जनाब वाला सलामत रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, और जितनी इज्जतों से आप नवाजते हैं अल्लाह पाक उतनी इज्जतें आपको भी दे। आमीन
1: आमीन। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो माशाल्लाह आपको आज का दिन की ईद बहुत बहुत मुबारक हो,
0: खैर मुबारक,
1: और आपकी पूरी फैमिली को, संगत साथ को, अहल-ए-याल को। और मौला अलैहिस्सलाम का वो कहते हैं कि मन कुन तो मौला हो फाज़ा अली उन मौला, जो सरकार का आज का दिन है वो आपको और साहिबान ईमान को बहुत बहुत अथाह दिल की गहराइयों से बहुत,
0: और आपको भी बहुत बहुत बहुत बहुत ईद गदीर की मुबारकबाद कबूल।
1: बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और मेरी तरफ से सैयद तुराब हैदर शाह साहब माशाल्लाह हमारे नन्हे हैं, मुझे अल्लाह ताला उनको सलाम रखे।
0: उनकी सालगिरह थी अगले रोज और बड़े खुश थे और इंजॉय कर रहे थे और पूछ रहे थे कि मेरे लिए कोई सालगिरह का कोई गीत वीत होगा, तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं अगले प्रोग्राम में लेके चलूंगा आपको साथ, तो इंशाल्लाह वीकेंड आपकी उनसे मुलाकात जरूर होगी।
1: अच्छा उनकी बर्थडे कब है?
0: सेकंड को थी।
1: अच्छा
0: माशाल्लाह 9 साल के हो गए
1: जनाब, उनको था दिल की गहराइयों से बहुत बहुत जनाब मुबारक हो और अल्लाह ताला उनको खिज्र उम्र अता फरमाए।
0: उम्र खिज्र, बहुत शुक्रिया। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन, बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा।
1: बहुत शुक्रिया सर। और जनाब मोहतरम शकील साहब हैं, जंगीर साहब हैं, चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, महबूब अली साहब हैं, चौधरी फरियाज साहब हैं, राणा वजीर साहब हैं, और भी जो जो आपके माशाल्लाह इतने खूबसूरत रेडियो की नशरियात सुन रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से मोहब्बतों भरा, चाहतों भरा, उल्फत भरा, अकीदत भरा, उन्स भरा बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम, आपको भी सलाम कबूल।
1: तो मोहतरम मैं एक चंद लेने लेके आया हूँ।
0: जी जी इनायत कीजिए।
1: तो ये है तो गदीर के वाले से अगर जाल तो
0: जी जी जी, जी जरूर बिस्मिल्लाह।
1: तो कहते हैं कि पाक नबी ने फरमाया जिवें मैं वर्गा कोई होर नहीं।
0: आहा आहा क्या कहने,
1: मन कुन तो मौला याद रखना मेरे बाद करना अपना शोर नहीं।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: ये मेरा अटल फैसला है, मेरे कर्म मेरे फिक्र करना गौर है सा, जिंद जिंदी परची ते पीर अली दी मोर नहीं, हशर नु उसने पार नहीं लगना,
0: आहा
1: दामन ते पीर अली दी मोर नहीं।
0: आहा
1: सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह ताला खैर आपको जज़ाए खैर ता फरमाए। तो एक और है
0: जी जी ना,
1: रुखसारे ममकरात का गयाजा गदीर है,
0: वाह वाह,
1: इंसानियत के जिस्म में ताजा गदीर है,
0: ताजा गदीर है, वाह वाह।
1: अरे जिन्होंने खाया था माले खतीजा का,
0: आहा,
1: इस शोक से उन सब की बेबसी का जनाजा गदीर है।
0: क्या कहने, शान हैदर बेबाक के चंद अशारे इसी हवाले से कि कौले अहमद है कि है दीन का रहबर हैदर, कौले अहमद है कि है दीन का रहबर हैदर, जानशी मेरा वसी मेरा बरादर हैदर, कौल अहमद का है दीन का रहबर हैदर, जानशी मेरा वसी मेरा बरादर हैदर, हू बहू मेरी तरह आयनाए अकबर हैदर, हू बहू मेरी तरह आयनाए अकबर हैदर, शहर हूँ इल्म का मैं और ये है दर हैदर, और बाद मेरे यही अफजल है यही ओला है, बाद मेरे यही अफजल है यही ओला है, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है,
1: अली मौला है। क्या जनाब, बेशक बेशक, वो मुझे याद आ गया, वो कहते हैं कि कब समझे लोग हकीकत गदीर की,
0: वाह वाह,
1: इसके लिए तो चाहिए ताकत जमीर,
0: वाह वाह वाह वाह। अच्छा अब वक्त हुआ जाता है बिल्कुल ब्रेक का, आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर दिल की अथाह गहराइयों से आपको ईद गदीर की बहुत बहुत मुबारकबाद, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा
1: जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह
0: हाफिज़। और सामिन अब चलते हैं ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद होती है आप सुनने वालों से मुलाकात।
2: You're listening to Bradford Asian Radio
3: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95VR, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
13: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
14: You're listening to Bradford Asian Radio,
3: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: और सामीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को रंगे महफिल में खुश आमदीद। और अब हमारी दूर की कॉलर, जी हाँ, फ्रांस से हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं अहीर, जिन्हें हम आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके?
0: अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। आप सुनाइए, आप ठीक हैं, खैरियत से?
1: अल्हम्दुलिल्लाह जी, टिप टॉप मजे पे। आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक और आपके तमाम सुनने वालों को भी बहुत बहुत
0: जी बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। और हमने भी अच्छी इंजॉय की ईद, और उम्मीद करते हैं कि आपने भी खूब इंजॉय की होगी खाने वाने।
1: हाँ ना, आपको पता हर घर में यही रौनकें होती हैं।
0: सही से, सही है ना? ऐसी।
1: अच्छा जी, मैंने बिल्कुल लास्ट में थोड़ा सा सुना था, मैं किसी की बर्थडे थी आप में से किसी की?
0: जी।
1: अच्छा अच्छा, तो सही सही, मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूंगी अगर इजाजत हो।
0: जरूर जरूर, इनायत कीजिए।
1: जी, कहते हैं कि मुबारक आपको आपकी सालगिरह हो।
0: वाह वाह, क्या कहने।
1: मुबारक आपको आपकी सालगिरह हो, आने वाला हर साल खुशियों से भरा हो।
0: आमीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त।
1: आपके इर्द गिर्द बहारों का रक्स हो।
0: वाह वाह,
1: आईना आपकी खूबसूरती का अक्स हो।
0: माशाल्लाह,
1: मंजिले खुद आपके कदमों में आए।
0: आहा,
1: आपको कभी कोई ना मुसीबत मिले।
0: क्या
1: मिले तो हर लम्हा अच्छी किस्मत मिले, सब लोग आपके गुण गाने लगे, आप घर सबके दिलों में बनाने लगे।
0: वाह वाह, क्या कहने।
1: बुलंदी आपके कदम चूमे, मुसरतें आपके चार सू घूमे, आपकी पूरी हर कोई ख्वाहिश हो। मुबारक आपको आपकी सालगिरह हो, आने वाला हर साल खुशियों से भरा हो। आमीन आमीन।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मेरा छोटा बेटा है तोरा बैदर, तो वो उसकी सालगिरह थी, तो उसपे रुसार चौधरी साहब मुबारकबाद दे रहे थे। वो याद है, यहाँ प्रोग्राम में भी आया था और उसकी सालगिरह थी, 9 साल का हो गया। माशाल्लाह
1: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसी तरह इनको कामयाबी की मंजिले ये चढ़ते जाए और आप लोगों का नाम रोशन करे, और अब आपके साथ साथ अपना नाम भी ये लाजमी रोशन करे। बुरे लोगों बुरी नजरों से अल्लाह पाक बचा के रहे।
0: आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया आपका। और आज के इस प्रोग्राम में शायरी कुछ लाए हैं आप या क्या होगा गाना?
1: मैं सुनाती हूँ। कहते हैं कि वो पानी की लहरों पे क्या लिख रहा था।
0: वो पानी की लहरों पे क्या लिख रहा था?
1: खुदा जाने, हर पे दुआ लिख रहा था।
0: क्या कहने, मुझे कतील सिपाही का वो शेर याद आ जाता है जब भी पानी की बात होती है, कि ना कोई ख्वाब हमारे हैं ना ताबीरें हैं, ना कोई ख्वाब हमारे हैं ना ताबीरें हैं, हम तो पानी पे बनाई हुई तस्वीरें हैं।
1: तस्वीरें हैं, बिल्कुल जी। तो फिर आगे कहते हैं कि मोहब्बत में नफरत मिली थी उसे भी।
0: मोहब्बत में नफरत मिली थी उसे भी।
1: नफरत मिली थी उसे भी, जो हर शख्स को बेवफा लिख रहा था।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: लिखा जिसने नावल वफा का अधूरा। लिखा जिसने नावल वफा का अधूरा, वही प्यार की इंतहा लिख रहा था।
0: क्या कहने क्या कहने।
1: भला करते करते गुजारी जिंदगी।
0: वाह वाह,
1: भला करते करते गुजारी जिंदगी, मगर मगर फिर भी खुद को बुरा लिख रहा था।
0: बहुत हूँ, बहुत हूँ।
1: जरा इसकी आंखों से आंसू ना निकले।
0: वाह वाह,
1: जरा इसकी आंखों से आंसू ना निकले, जिस वक्त वो लफ्ज़े सजा लिख रहा था।
0: बहुत हूँ, बहुत हूँ।
1: नमाज़े मोहब्बत में वो अपने, नमाज़े मोहब्बत में वो अपने, हुए थे जो सजदे कज़ा लिख रहा था।
0: बहुत
1: बका फना की, फना ही बका की राह बनी।
0: वाह,
1: बका फना की, फना ही बका की राह बनी, खजा से गुजरे तो हम बादे नो बहार हुए।
0: बहुत
1: शुक्रिया आपके बातों का, थैंक यू सो मच। आगे टाइम है तो एक और सुना दूं।
0: जी सुनाइए, वक्त है हमारे पास। जी आप सुनाइए।
1: ऐसे ही कि वो रास्ते जो भटक गए, वो रास्ते जो भटक गए, वो मंजिलें जो खो गईं, अब इन पे है मिलाल क्यों, अब इन पे है मिलाल क्यों, ये दिल है अश्क बार क्यों।
0: अश्क बार क्यों, वाह वाह।
1: जो नहीं मिला वो मेरा ना था,
0: सही,
1: जो नहीं मिला वो मेरा ना था, जो मिला मुझे वो मेरा नहीं।
0: क्या कहने, क्या कहने, लाजवाब है।
1: जो पास है बहुत दूर है, जो पास है बहुत दूर है, जो दूर है वही पास है।
0: क्या कहने, क्या कहने।
1: पर दिल को अजब सी आस है, पर दिल को अजब सी आस है, पर मोहब्बत मुझे कब रास है।
0: मुझे इससे वो एतवार साजिद की गजल याद आ रही है ना, खूबसूरत है इसी हवाले से, कि जिन्हें मानता ही नहीं है दिल, वही लोग हैं मेरे आसपास, मुझे हर तरह।
1: पर दिल को अजब सी आस है, पर मोहब्बत मुझे कब रास है।
0: मुझे इससे वो एतवार साजिद की गजल याद आ रही है ना, खूबसूरत है इसी हवाले से, कि

0: परसों था यही गुमान मुझे, परसों था यही गुमान मुझे कि बस वही रास्ता था जो खो चुका।
1: खो चुका, बहुत बहुत
0: बहुत शुक्रिया जी।
1: जी जी, तो बस यही था आज के लिए। कुछ गीत गाना चाहें तो भी गा भी सकती हैं, अगर है कुछ गाना है तो गा लीजिए।
0: गीत गीत गीत थोड़ा सा मुझे टाइम दे फिर अगर है तो।
1: चलिए,
0: गुनगुनाती तो नहीं हूँ मैं इतना अच्छा, बट इतना क्या मुझे आता ही नहीं है।
1: देखते हैं आज कैसे आप करती हैं। जी जी,
0: देखती हूँ
1: जी जी
0: देखती हूँ, रुक जाइए। फिर आप हंसना नहीं, ठीक है?
1: ठीक है, मैं नहीं हंसता।
0: सुनाती हूँ, कहते हैं कि चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम,
1: बहुत खूब
0: बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदलना

0: चुरा लिया है तुमने जो दिल ओ, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदलना जाना सनम। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजरता जाए ये दिन कहीं इसी तमन्ना में। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजरना जाए ये दिन कहीं इसी तमन्ना में। ओ तुम मेरे हो, अब तुम मेरे हो, आज तुम इतना वादा करते जाना चुरा लिया। बहुत शुक्रिया।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। मैं जब भी ये गीत सुनता हूँ ना, तो मुझे मोहसिन नकवी की वो नज़्म याद आ जाती है कि अगर तुम आईना देखो तो, अगर तुम आईना देखो तो अपने आप से नजरें चुरा लेना, अगर तुम आईना देखो, अगर तुम आईना देखो तो अपने आप से नजरें चुरा लेना, कि अक्सर बेवफा लोगों को जब वो आईना देखें तो आंखें चोर लगती हैं। आपके लिए बहुत सी तालियां, आपके लिए बहुत सी तालियां। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें।
0: अल्लाह
1: हाफिज। और जी हाँ सामीन, अभी टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ थे हीर फ्रांस से, आप कॉल कर रही थी, बेहद शुक्रिया आपका। और सामीन हमारे पास यूँ कह लीजिए कि तकरीबन 18-20 मिनट रहते हैं, अगर तशरीफ लाना चाहें तो कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं, 01274306677, 01274306677। दीगर अगर आप व्हाट्सएप के जरिए भी कॉल करना चाहें तो भी कॉल कर सकते हैं, नंबर है 00447, जी हाँ 00447 800 599 563। आप शायरी सुना सकते हैं, कोई गीत गा सकते हैं, कोई अच्छी बात कर सकते हैं। और आज जिस हवाले से हम बात कर रहे थे, अगर उस हवाले से भी बात करना चाहें तो ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। आज का उनवान था मुलाकात, और मुलाकात के हवाले से कुछ बातें हमने भी आप के रूबरू पेश की, कि मुलाकात जिस तरह दो तरह की होती है, कि एक सरसरी सरेरा और एक होती है जब आप किसी को दावत देते हैं, मदऊ करते हैं, लेकिन जो असल मुलाकात होती है वो सरसरी सरेरा वाली मुलाकात होती है, क्योंकि उसमें कोई तसन्नो, कोई बनावट नहीं होती, आपको पता ही नहीं होता कि किस मोड़ पे कोई मिल जाए। और जो तयशुदा मुलाकात होती है, जैसे ईद पे किसी को बुलाना या मिलना मिलाना, तो उसमें बहुत ज़्यादा तसन्नो होता है, बनावट होती है, रख रखाव होता है। तो आप बताइएगा कि आप कौन सी मुलाकात आपके नज़दीक ज़्यादा पुरखलूस होती है, ज़्यादा मानी खेज होती है, ज़्यादा हकीकी होती है।

वो सिलसिले वो शौक वो निस्बत नहीं रही, वो सिलसिले वो शौक वो निस्बत नहीं रही, अब जिंदगी में हिज्र की वहशत नहीं रही। वो सिलसिले वो शौक वो निस्बत नहीं रही, अब जिंदगी में हिज्र की वहशत नहीं रही। और फिर यूं हुआ कि कोई अपना नहीं रहा, फिर यूं हुआ कि कोई अपना नहीं रहा, फिर यूं हुआ कि दर्द में शिद्दत नहीं रही। टूटा है जब से उसकी मसीहाई का तलिस्म, दिल को किसी मसीहा की हाजत नहीं रही।

और समीन, एक शेर देखा पसंद आया, जी चाह रहा है कि आपके साथ भी उसे शेयर किया जाए, आपको भी उसमें शरीक करें हम। कि ऐसी हालत में ईद आई है, ऐसी हालत में ईद आई है, पास हो तुम न वाईफाई है। क्या कहने, कि ऐसी हालत में ईद आई है, पास हो तुम न वाईफाई है। ऐसे भी होता है कि इंटरनेट के कनेक्शन जब कमज़ोर होते हैं तो ईद का मज़ा सारा ख़राब हो जाता है, जब आप में किसी को ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे होते हैं। ऐसी हालत में ईद आई है, पास हो तुम न वाईफाई है। और समीन, इसी के साथ ही आज का रंगे महफिल पहुँचा अपने इख्तिताम पे। बेहद शुक्रिया आप सभी सुनने वालों का जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में हमारा साथ दिया, कॉल्स की, हमें मसरूफ़ रखा, रौनक लगाई, रौनक बढ़ाई। बेहद शुक्रिया आप सभी सुनने वालों का। और अब इसी के साथ ही आज के रंग महफिल से आप सभी सुनने वालों से हम चाहेंगे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब तो जाते हैं बुध कदे से मीर, अब तो जाते हैं बुध कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अल्लाह हाफिज़।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
7: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
7: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
7: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 012।

0: आने वाली सदाएं दिलनवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
14: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online. This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
10: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
11: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627222, 9627222।
10: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटली हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने एशियन वेडिंग UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए।
3: रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 1-1 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children, to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services, with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा असर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड 3

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.